किशोर दा की आवाज, आरडी बर्मन का म्यूजिक और गुलशन बावरा के बोल। कुछ गाने जो है ना वो 5 मिनट में ही हमारे दिल की सारी बातें जाहिर कर देते हैं, और जब शब्द ना मिले तो बस गाने प्ले करके सुना देना चाहिए, वैसे भी समझने वाले समझ जाते हैं। खैर, सुबह के 5:31 हो चुके हैं। आकाशवाणी के दिल्ली का FM गोल्ड चैनल पर मैं हूँ पंकज, आपके साथ शो का नाम है भोर सुहानी। और जून जुलाई की गर्मी बस सह लीजिए, फिर तो अगस्त में सावन और त्योहार शुरू हो जाते हैं। इस गाने के बाद आपसे मिलता हूँ, और बस ऐसे गानों का मसाले तो रहिए, झूमते रहिए।

देवकी पंडित की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना था फ्रॉम द मूवी साज। और जून की गर्मी में आम तो देखिए अभी बाजार में तो बहुत आए हुए हैं और खा भी रहे हैं लोग, और पूरा बाजार जो है वो आमों से सजा हुआ है। और हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में आमों की बड़ी प्रशंसा की थी, और यहाँ तक कि मिर्जा गालिब भी ना आम खाने के बड़े शौकीन थे। उन्होंने आम पर एक फारसी में प्रसिद्ध मसनवी यानी आम की तारीफ दर सिफत अबाह में लिखा है कि आम में बस दो खूबियाँ होनी चाहिए, एक तो वो बहुत मीठे हों और दूसरा बहुत सारे हों। तो गर्मी के फलों और शरबतों का आप लुत्फ लीजिए। बाकी अगले घंटे सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे अर्पण बबीता शर्मा के साथ, और इस गाने के साथ ही मुझे यानी पंकज को दीजिए बहुत सुहानी से अनुमति। दोबारा जल्दी मिलूंगा, सुनते रहिए 24 घंटे हर दिन आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, और आम जैसे मीठे मीठे गानों का मजा लीजिए। नमस्ते।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.3 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 7:49:46. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿದೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ.
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है.
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो. और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं. तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर.
3: हर घर सूर्य घर.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा. मुख्य समाचार. वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिव कुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता. बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई. जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की. भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा. और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की. अब समाचार विस्तार से. वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी. उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा. एक रिपोर्ट.
5: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में. इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल.

0: हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका

0: स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्रीय शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज

0: ये सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, एक महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a 5-day visit to India beginning today. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman, elected President of 81st Session of UN General Assembly, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar congratulates him. Germany removes airport transit visa requirement for Indian nationals beginning today. New Delhi says the move will further enhance people-to-people ties between India and Germany. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 international to seal 3-match series 2-1. And now the news in detail. Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 5-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation, including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, and Science and Technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit.
3: The discussions will involve full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues of further cooperation in the areas of energy, trade, investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. India is an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian public sector undertakings have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore more opportunities to further enhance their presence.
2: Our correspondent has filed this report.
4: India and Venezuela share friendly relations, particularly in the areas of energy and trade. The visit is expected to strengthen bilateral ties and deepen cooperation between the two countries across several sectors. The Venezuelan delegation will

0: The June review comes amid sustained geopolitical tensions and volatile global crude oil and gas prices, which have complicated the outlook. Debunking reports of gold sales, the Reserve Bank of India today said there has been no change in its physical gold stock, which remains steady at 880.52 tons. The clarification comes after reports suggested that the central bank may have sold gold worth approximately $12 billion to shield its foreign exchange reserves from the impact of the ongoing conflict in West Asia. The United Nations Weather Agency has warned that a moderate to possibly strong El Nino is likely to develop in the coming months, raising concerns over higher global temperatures and more extreme weather events. According to the World Meteorological Organization, warming sea surface temperatures in the central and eastern Pacific Ocean are driving the phenomenon. The agency has forecast above average temperatures across most parts of the world from June to August and said El Nino conditions are likely to persist until November. The IMD has forecast hot and humid weather over parts of the northeastern region and Odisha, Konkan, Goa and sub-Himalayan West Bengal today. The Met Department has also predicted thunder squall conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Telangana for today. In Indonesia Open Badminton, H.S. Pranoy will face Ireland's Nat Nguyen and Ayush Shetty will meet China's Wang Hongyang in the men's singles this afternoon. In men's doubles, pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty suffered a setback after losing to Malaysia Kai Shing Pang and Aaron Thai by 6-11 in their match today. Benchmark domestic equity indices were trading over 0.5% lower in the afternoon trade today amid geopolitical jitters. The Sensex lost 524 points to 74,125, while the Nifty fell 147 points to 23,336 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. 21 people killed in a massive fire at a hotel in Delhi's Malviya Nagar. Prime Minister Narendra Modi expresses grief, announces an ex gratia of 2 lakh rupees to next of kin of each deceased. Trinamool Congress faces turmoil as expelled MLA Ritavrata Banerjee claims support of nearly 60 MLAs in West Bengal Assembly. Supreme Court forms high-powered expert panel to re-examine Aravali definition. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. India becomes the world's second largest solar growth market, surpasses USA in annual solar capacity additions. And with that, we end the midday news.
1: मैं लवलीन निगम दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल-पुथल मची सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे अब समाचार विस्तार से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है एक रिपोर्ट
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग दिल्ली पुलिस जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी

0: एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
3: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
1: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में 2 पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है।

0: भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है, क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचाई इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का

0: रास्ता बनाए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
1: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओमबाम रुंगथान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉकर टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की

0: घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई, 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में एक महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमरीका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको हो रही है।
2: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
4: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जरूरी से दवाई खरीदे।
2: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कंबोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
6: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माही में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritavrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
8: ATF price stabilization fund mein
9: a self sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly

जाए तो भाई दिल पर खास दस्तक तो बनती ही है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो लिखते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, हर दर्द चुपचाप सहते हैं, चुप छुप जाओ आंखों में, बस जाओ सांसों में, धड़कना भी धड़कन भी करती है सदा आपके नाम की, वो दिल ही क्या जो वफा ना करे, तुझे भूल कर जिए कभी खुदा ना करे। वाह, बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन दोस्त, प्रॉब्लम एक ये है कि आपने अपना नाम नहीं लिखा है। तो भाई अपना नाम लिखना मत भूलिए। एक और मेरे पास मैसेज आया है, तो उन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन वो कहते हैं कि कभी कभी ना जब पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं तो कभी कभी आंखें नम भी हो जाती हैं। तो भाई ये तो बात बिल्कुल सही है दोस्त, क्योंकि अगर पिछले साल की तरह आप बहुत अच्छे से इस साल भी हैं तो पिछले साल की यादें नहीं आएंगी, या उससे पहले की भी यादें नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, अगर पिछले साल आप बहुत खुश थे या पिछले दिनों बहुत खुश थे और जो वक्त चल रहा है इसमें आपकी आंखें नम हैं या किसी बात को लेकर आप फिक्रमंद हैं, तब तो फिर वो हालात बनते ही हैं। दोस्तों पता है आपको, जब हम छोटे थे तो बहुत बहुत बहुत सारे बच्चे मिलकर पानी में खेलते थे, कागज़ की नाव बनाते थे, और जब हम ये गाना सुनते थे ना कभी कभी कहीं पे चलते हुए, भले ही रेडियो पर हो या फिर हो टीवी पर, तब हमें लगता था कि ये आखिर गाना बनाया क्यों गया है, ये गज़ल बनाई क्यों गई है, क्योंकि जब छोटे होते तो सारी गजलें वजलें जो भी होती हैं वो हमें गाना ही लगती हैं। बाद में जब बड़े होने के बाद पता लगता है कि गजलें होती हैं, गाने अलग होते हैं, गजलें अलग होती हैं। तो ये जब हम गजल सुनते थे, वो कागज़ की कश्ती, तो ये लगता था कि जो हम कश्ती होती है वो तो कागज़ की होती है, ऐसा सॉन्ग क्यों गाया गया है समझ में नहीं आता। जब धीरे धीरे बड़े होने लगे और जब बड़े हो गए और इस गाने का मतलब समझने लगे, एक एक लाइन का, एक एक शब्द का मतलब समझने लगे, तब समझ में आया कि इस गज़ल का एक एक शब्द वाकई बहुत कुछ कहता है। तो चलिए आज पुरानी यादों को थोड़ा सा ताज़ा कर लेते हैं और गीत कह लीजिए या फिर कहिए गज़ल, वो दोनों की आवाज़ में मतलब एकदम परफेक्ट बैठती है। और सच में कुछ लोग तो पुराने दिनों में चले ही जाते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि ये दिन फिर कब आएंगे। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गज़ल।

0: गज़ल की फरमाइश की है। वैसे तो दोस्त ये जो हमारा प्रोग्राम है ना वो फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, फिर भी कोशिश करके देखती हूँ। अगर मेरे पास ये गज़ल हुई तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये गज़ल मुझे भी बहुत पसंद है और ये गज़ल बहुत बहुत बहुत कम सुनने को मिलती है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो आया है जी हाँ मोहम्मद इम्तियाज़ का, इम्तियाज़ जवाहर का, कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से। वो लिखते हैं, है खामोश रात, है खामोश रात, बस कोई साथ नहीं, कुछ बातें अपने आप से कर ले, जिन्हें जीने की चाहत हो जाती है। मुझे कुछ जो आपने लिखा है ना, और उससे पहले जो लिखा है, जो बड़ा वाला आपने मैसेज लिखा, तो वो तो पढ़ के मुझे कुछ समझ में आया ही नहीं दोस्त। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा कम शब्दों में अपनी बात को रखने की कोशिश करा करें। लेकिन जो भी आपने लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन ऐसा क्यों आप सोचते हैं कि आपके साथ कभी कोई नहीं है तो आप अकेले हैं और इसलिए अपने आप से बातें कर ले ते हैं? तो भाई हमारा पूरा रेनबो परिवार वो है, आप सभी के साथ तो है, तो आप अकेले कैसे हुए? और हम तो अपने आप को कभी अकेला महसूस करते ही नहीं, क्योंकि आप सबको हम अपने साथ हमेशा हमेशा समझते हैं। अब ये सही बात कितनी है, अब ये आप पर निर्भर करता है। हम आपके दिल में रहते हैं, हर दर्द चुपचाप सहते हैं, छुप जाओ आंखों में, बस जाओ सांसों में, धड़कन भी करती है सदा आपके नाम की सदा, वो दिल ही क्या जो वफा ना करे। ये मैं पहले पढ़ चुकी हूँ और इसी के आगे लिखा है कि आपकी हंसी में काफ़ी आपकी हंसी हमें काफ़ी पसंद है, हंसी खुशियों का एहसास है। बिल्कुल दोस्त, हंसी हमेशा खुशियों का एहसास होती है, लेकिन कभी कभी हंसी में भी गम छिपा होता है। हाँ, वो अलग बात है कि आप किसकी हंसी को कितना पहचान रहे हैं या किसको कितना जानते हैं, क्योंकि यूं तो हालातों के थपेड़ों से न झुके न रुके हम, यूं तो हालातों के थपेड़ों से न झुके न रुके हम, पर इश्क, इश्क की चोट ने अपाहिज बना दिया हमें, अपाहिज बना दिया हमें।
1: लड़की के बीए पास करने की खुशी में इतनी शानदार पार्टी है।
2: ये बेचैनी, ये इस्तराब मालूम होता है किसी खास मेहमान का इंतजार हो रहा है।
3: जी नहीं, मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि सब लोग
4: हेलो विकास, तुम आ गए?
5: जी
4: आओ, मैं तुम्हें अपने मेहमानों से मिलाऊं। आपसे मिलिए, आप हैं मिस्टर यश कोहली, कैम्ब्रिज से डॉक्टरेट करके अभी अभी लौटे थे, आजकल डिप्टी कमिश्नर है। और आप हैं मिस्टर विकास, मेरी लड़की के क्लास फेलो थे, बेचारे इस साल बीए में फेल हो गया। मिसेस कोहली, आपसे मिलिए, आप हैं मिस्टर खन्ना, टी प्लांटेशन और फ्रूट गार्डन के मालिक, लाखों रुपए की आमद। आप हैं मिस्टर विकास।
0: जी हाँ, तो ये आपने जो शब्द सुने कि किसी के पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, कितनी भी दौलत हो, लेकिन वो खुशियाँ कभी खरीद नहीं सकते, और जब खुशियाँ खरीद नहीं सकते तो फिर ऐसी दौलत का फ़ायदा क्या? इसलिए जब भी आप ये सोचें कि खुश रहना है, तो सबसे पहले खुश रखने की कोशिश की जानी चाहिए।

0: फिर जी चाहता है कि खामोशियों के मेले में गुम हो जाएं, फिर जी चाहता है कि अंधेरों में फिर से छिप जाएं, फिर जी चाहता है नींद ना आने पर भी आंखें मूंद कर किसी के सपनों में खो जाएं। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। जी हाँ, प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल, और रंगे महफिल को आप सुन रहे हैं दिल्ली और एनसीआर में 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, और पूरे भारत में हम जुड़े हैं आपसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर, और अब ऐप के जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। फिलहाल लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास। बने रहिए हमारे साथ।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल, और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से हिंदी।

0: की ओरिजिनल आवाज आकाशवाणी आकाशवाणी
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन।

वेलकम बैक दोस्तों, आपके मैसेजेस लगातार मुझे मिल रहे हैं। एक हमारे दोस्त हैं, वो पूछ रहे हैं कि मैं अगली बार कब आऊँगी। तो दोस्त, वैसे तो वादा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अब सोच रही हूँ मैं ये कि आप जब इतनी फरमाइश करते हैं इस प्रोग्राम की, मेरे इस प्रोग्राम की, तो फिर क्यों ना जल्दी आ जाए। तो जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूं कि मैं फिर बहुत जल्द मिलने वाली हूँ आपको 6 जून को, जी यानी कि 6 जून को, दो दिन के बाद। आज 3 हो गई, 4, 5 और 6 को हम मिलने वाले हैं। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, शांतिनगर सोनीपत से। उन्हें भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और उन्होंने दिल से धन्यवाद दिया है और साथ में बहुत ही अच्छी और प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मेरे पास मैसेज है, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, तो दोस्त प्लीज़ अपना नाम ज़रूर लिख कर भेजिए। तो भाई, वैसे तो मैं नाराज़ नहीं होती हूँ, लेकिन आप क्या चाहते हैं मैं नाराज़ हो जाऊँ? जी हाँ, मैं जानती हूँ कि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मैं आप सबसे नाराज़ रहूँ। तो अपना नाम लिखना मत भूला करिए अपने मैसेज के साथ। फिलहाल मैं आपसे यही कहूँगी, यूँ तो आना जाना लगा ही रहता है तेरी गलियों में, यूँ तो आना जाना लगा ही रहता है तेरी गलियों में, आज कुछ खास नज़र आया तेरी गली के नुक्कड़ पर। हजारों आंखें गड़ी थी मुझ पर, जी हाँ, हजारों आंखें गड़ी थी मुझ पर, और मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ तुझ पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

वेलकम बैक दोस्तों। कभी कभी दिल करता है ना कि हम सिर्फ खामोश रहें और सामने वाला बस बोलता रहे, या फिर सामने वाला भी कुछ ना कहे, हम भी कुछ ना कहें, सिर्फ और सिर्फ दिल पर देते दस्तक गीत और गजलों का लुफ्त उठाते रहें। जी हाँ, आज मेरा भी मन कुछ ऐसा ही है कि बातें कम करूं, लेकिन दिल पर देते दस्तक गीत और गजलों की जो खूबसूरत माला लेकर मैं आई हूँ, वो आप सबके कानों के जरिए जी हाँ दिल में दे खास दस्तक। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मैसेज जो किया है, वो मैसेज तो किया है, मैसेज अच्छा भी है, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है और उन्होंने बहुत ही लंबा चौड़ा मैसेज कर दिया है। तो दोस्त, ये बात तो गलत है, मैं हमेशा कहती हूँ और फिर आप सबसे कह रही हूँ कि अपने मैसेज को जितना हो सके छोटा करके लिखिए। एक और मैसेज है, उसमें कहा गया है कि जगजीत सिंह जी की कोई भी अच्छी सी गज़ल प्ले कर दो प्लीज़। तो भाई देखिए, मैंने आते ही सबसे पहले जगजीत सिंह जी की ही गज़ल प्ले की थी और अब तक मैं शायद 2 या 3 गज़लें उन्हीं की आवाज़ में सुनवा चुकी हूँ, और अगर आपने नहीं सुनी है तो चलिए

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग
1: कभी सुनहरी यादें कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर

11:54 और 51 सेकेंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, गीत मेरे मनमीत। अगला गीत आप सुनेंगे शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध है, शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत है, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में होगा ये गीत। फिल्म का नाम है चोरी चोरी।

0: से न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
1: तो बताइए फिर कि हमें पूछना है ये नहीं पूछना कि आप हमारे कौन हैं। ये पूछने की जरूरत तो हमें पड़ती ही नहीं है क्योंकि हम हमेशा आपके साथ रहते हैं और ऐसे ही दिन रात आप भी हमारा साथ देते हैं क्योंकि ये है आपका अपना आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और इसी गीत के साथ अर्पना को दें इजाजत एफएम गोल्ड पर। अब आप सुनेंगे समाचार। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने इसे योगासन के वैश्विक खेल मानचित्र पर महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजकों तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय संबंधी केंद्रीय सलाहकार समिति की नई दिल्ली में उच्च स्तरीय राष्ट्रीय बैठक हुई। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए योजना के वांछित परिणाम के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच तालमेल पर बल दिया। उन्होंने बताया कि सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक और आकांक्षी अनुसूचित जाति समुदायों तक पहुंचने के लिए पीएम अजय योजना का दायरा विस्तारित किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। ब्रिटेन की विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर दो दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से भी मिलेंगी। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sai Ramujtaba. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel or ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
3: ATF price stabilization fund mein
4: a self-sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
3: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
2: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Regional Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. The scheme, with a total financial outlay of 9,585 crore rupees, seeks to incentivize owners of trucks and buses registered in the Delhi NCR region that comply with BS4 or earlier emission norms to replace them with BS6 or electric vehicles. Prime Minister Narendra Modi has stated that yoga is gaining tremendous popularity across the world. In a social media post, the Prime Minister said that he will join the first World Yogasan Sports Championship 2026 virtually tomorrow. The championship will be held in Ahmedabad, Gujarat. Mr. Modi said the platform has brought together yoga enthusiasts from around the world. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar co-chaired the 10th India-Laos PDR Joint Commission meeting with Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Laos People's Democratic Republic, Thong Sawan Phomvihan, in New Delhi. During the meeting, both sides held detailed discussions on various aspects, including trade and investment, health, energy, digital connectivity, development partnership, capacity building and culture. UK Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs, Yvette Cooper, arrived in New Delhi on a two-day visit to India. Ms. Cooper is scheduled to call on Prime Minister Modi tomorrow. She will also meet External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar tomorrow. National Payments Corporation of India has officially partnered with Acleda Bank to launch Unified Payments Interface or UPI acceptance in Cambodia. The Ministry of Finance said that the first phase enables millions of Indian travellers to make seamless QR payments at over 4.5 million Cambodian merchants, with a two-way corridor to follow. It said that in the subsequent phase, the corridor will become fully bi-directional. A total of 21 people lost their lives after a fire broke out at a hotel in Malviya Nagar area of New Delhi. Delhi police said the deceased include 9 Indian nationals and 12 foreign nationals. The police informed that a total of 49 persons were admitted to various hospitals for treatment. During the course of treatment, 21 injured persons succumbed to their injuries. 8 injured persons have been discharged after receiving treatment, while the remaining continue to undergo medical care. The police said a case has been registered and an investigation is underway. They further informed that Lavkesh Bajaj, the owner of the building in which the fire broke out, has been detained. The newly sworn-in Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar has announced free bus passes for all students in his first cabinet decision. Briefing media, the Chief Minister said that students can register and obtain free passes. He also announced measures for employment generation for youth registered with employment exchanges, stating that the private sector will be encouraged to provide job opportunities. Additionally, the Chief Minister announced a grant of 2,000 crore rupees for the Greater Bengaluru Authority to improve road infrastructure. Maharashtra has earned major recognition at the National Panchayat Awards 2025 presented by the Union Ministry of Panchayati Raj in New Delhi. Bhandara District's Itigaon Gram Panchayat secured the first position in the child-friendly panchayat category. In badminton, India's Ayush Shetty advanced to the pre-quarters of the Indonesia Open Super 1000 with a comeback win over China's Wang.

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन सकते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिकांत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अभी आपने फिल्म राजपूत से किशोर कुमार की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत सुना। इन आंखों के साये में जरा आराम तो कर लेने दो, इन आंखों के साये में जरा आराम तो कर लेने दो, थक चुकी हूं दुनिया की धूप में चलते चलते।

अभी आपने हेमलता की आवाज में फिल्म अखियों के झरोके से ये गीत सुना। कहीं दूर तक चलना था, कहीं दूर तक ही चले आए। कहीं दूर तक चलना था, कहीं दूर तक ही चले आए कि इस दिखावे की दुनिया से हम बहुत परे हो गए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है ऋषिगंधा और मैं हूं आपके साथ अंजू। ब्रेक पर जाने से पहले जो हमने आपको गीत सुनाया था उसे गाया था किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म का नाम था दूसरा आदमी।

रंगत है दिल में मोहब्बत है क्या जिसमें औरत है बस जन्नत ही जन्नत है।

अभी आपने किशोर कुमार की आवाज में फिल्म ड्रीम गर्ल से ये गीत सुना। तुमसे मिलकर जाना कि जिंदगी क्या होती है, तुमसे मिलकर जाना कि जिंदगी क्या होती है, वरना वरना तो अंधेरे में भटकती हर राह सुनी होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले पहले विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्प बंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। श्री शाह के दौरे के सिलसिले में राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय प्रशासनिक और सुरक्षा बैठक आयोजित की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। ब्रिटेन की विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से भी मिलेंगी। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पोस्वान को पराजित किया। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. मैं हूं अंजू आपके साथ और लेकर आई हूं कार्यक्रम गीत सुहाने. तो रहिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में, सुनेंगे बेहद ही मधुर गीत. शुरुआत कर रही हूं फिल्म स्वामी से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने.

तेरी यादें तेरी बातें बस तेरे ही फसाने हैं। तेरी यादें तेरी बातें बस तेरे ही फसाने हैं। हाँ, कबूल करते हैं कि हम तेरे दीवाने हैं।

मेरी नजर से ना देखना कभी खुद को, मेरी नजर से ना देखना कभी खुद को, उम्र गुजर जाएगी तुम्हें नजर उतरवाने में।

बंद आंखों से भी दिखता है उजाला तेरा, बंद आंखों से भी दिखता है उजाला तेरा, पर लोग कहते हैं कि ये सोए हैं, हम सोए कहाँ हैं, जागे हैं हम।

तेरी मदहोश नजरों के जादू का असर गहरा सा हुआ है, तेरी मदहोश नजरों के जादू का असर गहरा हुआ है कि होश में होकर भी ये दिल मुकम्मल मदहोश हुआ है।

अभी आपने कुदरत फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत सुना। न जाने कब तेरी आदत सी लग गई, हम तो यूं ही हर रोज मिला करते थे। तूने तो कभी इजहार भी ना किया, न जाने कब हम तेरे आशिक बन गए।

तुम जमाने के हसीन नज़ारे देखो, हमारी आंखों को तो बस तुम्हारा दीदार चाहिए। बेशक दुनिया दीवानी है खूबसूरत नज़ारों की, और हमें तो बस तुम्हारा मासूम चेहरा दिखना चाहिए।

तेरी सूरत के सिवा कोई मंजर नहीं भाता है, तेरी सूरत के सिवा कोई मंजर नहीं भाता है, अब तो ख्वाबों में भी कोई दूसरा नहीं आता है। इस कदर तड़प है दिल में तुम्हें देखने की, आए ना देखूं तो उसमें भी तेरा अक्स नजर आता है।

दोस्त भी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार दो बजकर 10 मिनट पर रात सुन मेरे घर पर फिर से आपके साथ रहेंगे सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहन से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली

0: मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जागरूकता बढ़ाने, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन मजबूत बनाने, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करने सहित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और रोजगार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम NPCI ने कंबोडिया में UPI भुगतान सुविधा आरंभ करने के लिए कंबोडिया के प्रमुख वाणिज्यिक बैंक ACALEDA बैंक के साथ साझेदारी की है। भारत आने वाले कंबोडियाई नागरिक जल्द ही अपने घरेलू बैंकिंग और डिजिटल भुगतान ऐप का इस्तेमाल कर पूरे भारत में लाखों UPI QR कोड स्कैन कर भुगतान कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे के दौरान पुष्पबंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की एक चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश राष्ट्रमंडल और विकास मामले मंत्री यवेट कूपर 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगी। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पोस्वान को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हुआ है 2:11 और 10 सेकंड। मैं हूँ आपके साथ अंजू। समय हो और बता दिया है और आगे सफर बढ़ाते हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं रात सुरमई।

हम तो अजनबी थे, कब खास हो गए पता ही नहीं चला। ये इश्क है, ये इश्क है, बस इसे यूं ही हो जाने दो।

रूठेगी अगर तकदीर तो उसे भी मना ही लेंगे, रूठेगी अगर तकदीर तो उसे भी मना ही लेंगे, और वादा है तुमसे हर हाल में एक ना एक दिन तुम्हें हम अपना बना ही लेंगे।

0: रेडियो के वो अनमोल किस्से
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत
0: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

हमारे जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यूनिंग किया है उन्हें हम बता दें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ अंजू। कार्यक्रम है रात सुरमई।

रात का अंदाज कुछ मध्यम सा होने लगा है, दिल तुम्हारी यादों के समंदर में खोने लगा है। अब भी आ जाओ कि अंधेरा होने को है, तुम्हारे बिना ये दिल फिर से रोने को है।

ये जादू तो यूं ही बरकरार रहेगा क्योंकि स्टूडियो में आ चुकी हैं माधुरी हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए और जल्द ही आपसे मिलूंगी। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, ये भी आपको बताते चलें, क्योंकि माधुरी खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं कि जल्दी से ये सीट खाली हो तो मैं बैठूं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, सुनिए समाचार, उसके बाद सुनेंगे आप 3:10 से हमराही। आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश है। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। 8 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जाँच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना में हुई लापरवाही की गंभीरता से जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: पश्चिम बंगाल विधानसभा में रतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृहमंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्प बंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की चौकी का दौरा करेंगे और राज्य एवं केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन की विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री की यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में आज ओलावृष्टि के साथ तूफान की आशंका है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंगफांग और यांग पो स्वान को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
3: ATF price stabilization fund mein
4: a self-sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
3: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
2: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. Mr. Vaishnaw also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradip to in Odisha. Prime Minister Narendra Modi has stated that yoga is gaining tremendous popularity across the world. In a social media post, the Prime Minister said, today he will join the first World Yoga Sinner Sports Championship 2026 virtually. The championship will be held in Ahmedabad, Gujarat. Mr. Modi said, the platform has brought together yoga enthusiasts from around the world. United Kingdom Secretary of State for Foreign Commonwealth Affairs Yvette Cooper arrived in New Delhi on a two-day official visit to India. Ms. Cooper is scheduled to call on the Prime Minister Narendra Modi today. She will also meet External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar this evening. The Ministry of External Affairs said her visit will provide an opportunity to further strengthen the India-UK Comprehensive Strategic Partnership. In a major political development in West Bengal, Ritabrata Banerjee has been appointed as a leader of the opposition in the West Bengal Legislative Assembly. The appointment follows the Assembly Speaker's reported recognition of a rebel group of Trinamool Congress legislators as a separate legislature party. A total of 21 people lost their lives after a fire broke out at a guest house in the Malviya Nagar area of New Delhi yesterday. Delhi police said that the deceased include 9 Indian nationals and 12 foreign nationals. The police said a case has been registered and an investigation is underway. They further informed that Lovekesh Bajaj, the owner of the building in which the fire broke out, has been detained. Meanwhile, Delhi Chief Minister's office said that the lapses that culminated in the tragic fire in the guest house will be examined with utmost seriousness and accountability will be fixed wherever it lies. The United Arab Emirates has expressed its solidarity with India following a deadly guest house fire in New Delhi that claimed several lives and left others injured. In a statement, the UAE Ministry of Foreign Affairs has conveyed its condolences to the families of the victims and reaffirmed its support for India in the aftermath of the tragedy. The newly sworn-in Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar has announced free bus passes for all students in his first cabinet decision. Briefing the media, the Chief Minister said students can register and obtain free passes. He also announced measures for employment generation for youth registered with employment exchanges, stating that the private sector will be encouraged to provide job opportunities. Additionally, the Chief Minister announced a grant of 2,000 crore rupees with the Greater Bangalore Authority to improve road infrastructure. National Payments Corporation of India has officially partnered with ACLEDA Bank to launch Unified Payments Interface UPI acceptance in Cambodia. The Ministry of Finance said that the first phase enables millions of Indian travellers to make seamless QR payments at over 4.5 million Cambodian merchants with a two-way corridor to follow. It said that the subsequent phases, the corridor will become fully bidirectional. In badminton, India's Ayush Shetty advanced to the pre-quarterfinals of the Indonesia Open Super 1000 with a comeback win over China's Wing Hong Yang. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही का ये सफर लेके माधुरी है आज की रात आप सभी के साथ. नमस्कार.

चलो मीत चलें दिन और रात की सरहद के पार, जहां तुम रात को दिन कहो तो मैं मुस्कुरा दूं, और जहां सूरत से तुम्हारी दोस्ती रहे और चांद से मेरी नाराजगी। चलो मीत चलें दिन और रात की सरहद के पार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। समय बता दें, रात्रि के 3:22 और हो गए हैं पूरे 15 सेकेंड।

हमसे जाओ ना बचा कर आँखें, यूं गिराओ ना उठा कर आँखें, खामोशी दूर तलक फैली है, बोलिए कुछ तो उठा कर आँखें।

खुले आसमां का पता चाहते हैं, परिंदे हैं हम और क्या चाहते हैं, उड़ेंगे हवा में खुद के परों से, उड़ानों में सारी फजा चाहते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर हमराही।

20. जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जब दिल किसी के प्यार में खो जाए तो फिर सच में जिया कहाँ लगता है। आवारा है गलियों में मैं और मेरी तन्हाई, जाएं तो कहाँ जाएं, हर मोड़ पे है रसवाई। ये फूल से चेहरे हैं, हंसते हुए गुलदस्ते, कोई भी नहीं अपना, बेगाने हैं सब रस्ते। राहें हैं तमाशाई, राही भी तमाशाई, मैं और मेरी तन्हाई, और इस तन्हाई में ये मोहब्बत का सबब।

रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहरे में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को चुपके से दवा मिल जाए। और इस शेर की ही तरह अगला गीत है हमारा कि कहते सुनते कब ये रात बीत जाए, कब कोई बात बन जाए, कब कोई बात बिगड़ जाए, और कब कोई बात बिगड़ के फिर समर जाए।

जी हाँ, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा और कहते सुनते हमराही का ये सफर भी अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए आ आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए।

और इसी के साथ हमराही का ये सफर यहीं समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। 8 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना में हुई लापरवाही की गंभीरता से जांच होगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम अरुणिमा के साथ मैं हूं माधुरी। नमस्कार।

एक कविता की कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं जो यकीनन दिल को छू लेंगी। जानती हूं जीवन मैदानों से ज्यादा विस्तृत है, हथेलियों से ज्यादा सुंदर है और धातु से ज्यादा कठोर है। जीवन का अनुवाद किसी भी भाषा में सिर्फ जीवन है। जीवन विन्यास है ऋतुओं का, नदियों का, उन रास्तों का जिनसे होकर हम काम पर जाते हैं। वो मुझे प्रिय हैं शब्दों से ज्यादा, आंसुओं से ज्यादा।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

एक और छोटी सी कविता है जिसे लिखा है नरेंद्र वर्मा ने, आप तक पहुंचा रही हूं। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 4:31 और हो गए हैं पूरे 47 सेकेंड। ये सफर है अरुणिमा का।

आनंद परम की ये कुछ पंक्तियां हैं आपके लिए। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सासद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा।

दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर तो देख, तू भी एक सिकंदर है।

बहुत ही प्यारी और जानी मानी कविता आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। सोहन लाल द्विवेदी की लिखी ये कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरम्भ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में रुकी विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। 8 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी का इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जाँच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और संपत्ति के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस दुर्घटना पर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भारत के प्रति अपना समर्थन जताया। बयान में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और भारत सरकार तथा लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। गृह मंत्री त्रिपुरा दौरे में पुष्प बंता पैलेस होटल के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। लंकामुरा में सीमा सुरक्षा बल की

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप। रात का अंधेरा छटने लगा है, नई सुबह आने को है। आइए स्वागत करते हैं इस सुंदर सी नई सुबह का नई ऊर्जा के साथ। माधुरी का स्वीकार कीजिए, सुप्रभात।

रात चाहे कितनी भी अंधेरी या मुश्किल क्यों ना रही हो, सुबह का सूरज हमेशा नई उम्मीदों के साथ उगता है। कल जो गलतियां हुई या जो काम अधूरे रह गए, उन्हें भूलकर आज एक नई शुरुआत करने का दिन है। ये सोचना कि आज का दिन मेरा है, आपको भीतर से मजबूत कर देगा।

सुबह उठते ही सबसे पहले इस बात के लिए भगवान या ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करें कि आपको जीवन का एक और खूबसूरत दिन मिला है। आपके पास जो कुछ भी है, परिवार, रहने के लिए घर, सेहत, सांसें, उनके प्रति आभार व्यक्त करें। कृतज्ञ रहने से मन में नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक चीजें जो हैं वो हमारी ओर बढ़ती हैं।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, सिर्फ FM गोल्ड पर।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और ये सफर है भोर सुहानी का। आपको पता है आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं। सुबह खुद से कहें कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं सक्षम हूं और मैं आज के दिन के हर चुनौती का सामना मुस्कुराकर कर सकता हूं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं ना, तो मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं और मुश्किलें भी आपके लिए आसानियां बन जाती हैं।